0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: द न्यूज प्लस

0: मेलायु मायुका लागि छ सुनसरी गाउँपालिका योगी मस्तक जरुरी सूचना जुहो बेला खेमरी दे गरम ओगोतिरी जेऊ बेला सुनो फुरी कता ओचुदुरी जेऊ आउ बेला क वन जंगल ल भे लागिने मस्त ज संभावना ताई आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र त खेत ज सखेन्ना दे वातावरण मिले ने ल खेपा असर किने रि उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज ताना दे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो माखर नामे ल भे लागिने सज जिने गिने लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिन्दगी को ठेल नेला की नाटी जन धने ने खेता छेती ताऊ दुबो होकाई
1: गेचो छानेला बन्न नेला की ने पुरो रंगे नौ पुराले चौसो खेल गिरी
0: बन जंगल सर मेरा आदि मेरी बानी एमएल एमए ओ छानेला ली उसको तर पोतर राले पार जगे रहते
1: सलाई लाइटर सियाला ने सचाने चीज राले जबांगजा र यामा देने पोलो गेने या इतो चीज र रहिदे बन जंगल याल के बाबा या
0: पिकनिक बन भोज बाक ने सचांसु छिनी नेले चौसो सैदे के खनाले बन जंगल ओ छानि दैके बारी को चुरोद बिदी ओरे बनै को
1: नाङथार नामलो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनी हुने ढाल्ने छ अनुगमन दिने व्यवस्था चौसर गिरिए
0: गेछो छामेला खोरेल चाउसी खोलिए हरिदे तरिन गाई गेज मेके लाइजु अब नजिरे बनाई गेम एल गेज मेके नलागे औलेम लायो के लाइए
1: वन जंगल स जुडिसियो घेम बारी ल बाली नाली कुचिउला चिउली झ्याप्रा र सताउँछु छिमी ने चौसो सैले के खेले यहाँ
0: वन जंगल नेला दिगे माइए
1: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाले कार्यालय खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सभा विपद व्यवस्थापन समिति पोबाङ रोल्पा।

झलझला टाइम चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको एक बज्यो।

0: सामुदायिक बनी होगी ढालने चा अनुगमन दिए व्यवस्था चावसर की दिए
1: गेस्ट और सामने लाखोरे लो चावसी पड़ी है होली दे तो इनका एक गेस्ट अम्मे के लाइज़ हो आप और नज़रे बनाए गेम ये लो गेस्ट अम्मे के नालाये और उल्लेम लायो के नालिये
0: बंद जंगल से जुड़ी सी गेम बारी लो बाली नाली कुचुला चुली यात्रा रोस चावसो छिनी ने चावसो सहरे के खेले
1: बंद जंगल अम्मे ला दी के माइये मे ओला दिखिनी पार सोना खरना मारो मिली दे बनाई सानो सो मे गेस्ट है
0: बतास उचली जू बेला को घिजिम के कोटल मे के सतांगी ने हेनोखे में छिन्नी ने चाव सके सोया
1: मे लागि ने निताई गे मने गे बचिए सोनो अरुले मने गे बचिया
0: के छ थामला पोया ल मे लागि कि सन्तिनी गे छटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सर सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनि कार्यालय ल खबर दिलिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।

0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनौ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड विचार तितो पनि मिठो पनि विषय राजनीतिक पनि गैर राजनीतिक अतिथि परिचित पनि अपरिचित पनि र सरोकार सीधा तपाईसँग प्रत्यक्ष पनि अप्रत्यक्ष पनि द न्यूज प्लस रेडियो थाहा संचार 99.4 सहित थाहा संचार नेटवर्क का पार्टनर स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रत्येक दिन बिहान 6:30 बजे निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास

0: 我来的呀。
1: 受不了了，我的八旗哥，我的八旗哥，王子，你怎么讲？啊，王子，你怎么来管老百姓呢？你怎么？
2: मेला यू मायू का लागि त सुनसरी गाउँपालिका यो मस्तक जरुरी सूचना जुमो पेला खेमरिदे गरम ओगोतिरी जेउ पेला सुनो फुरी कता ओचुदुरी जेउ आउ पेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्त ज सम्भावना ताई आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र तखेत ज सक्षम नादे वातावरण मिलेने लख्यापा असर किएने री उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानागे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिएने सुनो नाखार नामे ल मे लागिने सज जिमी जिमी लापरवाही सुनो चासो खेलगेमा दुख जिंदगी को ठेल मेला की नाटी जन धनी में खेता छिपी ताऊ दुबो होकाई
3: ये छो छालियाला बल्ला मेला की नेपुर रंगे नौ पूरा ले चौसो खेल गिरी
2: बन जंगल सरों मेरा आज मेरी बानी एमेला एमे उस छालियाला ली उसो कर पोतर राले पार जगिर हटे
3: सलाई लाइटर सियाला में सचांगे चीज राले जबांगजारो यामा देने पोला गिने या इतो चीज रा रही थी बन जंगल याला गिरा भाया
2: पिकनिक बन भोज बाको में सचांसो छिन्नी मेले चौसो सही देगी खिनाई बन जंगल उसो छामी तेगी बानी को चुरो विधि ओरे को नहीं कुबा
3: नान्थर नाम्रो लिजाऊ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हुने ढाल्ले छ अनुगमन दुने व्यवस्था चौसर गिरिए
2: गेछो छामेला खोरेल चाउसी पोलिए हैदिदे तरिम गाई गेजो मेके लाइजु अब नजरे बनाए गेन येल गेजो मेके नालाए औलेम लायो के लाइए
3: वन जंगल स जुडिसियो घेङ बारी ल बाली नाली कुचुला चुली यात्रा र सताउसु छिनि ने चौसो सहिदे के खेले या
2: वन जंगल मेला दुके माइए मे लागि किनि पार्कमा खर्नामार मिदि देखो नै सानो जने गेसैए
3: बत्तास उचली जु बेला त हिजिन के कोटल ने के सतांगी ने हेनो के मछिनि ने चाउस गेसैए
2: ने लागि ने निताए गे मने के पछिए सुनो अरुले मने गे बसैया
3: के छ छामला पोयाल ने लागि किसन किनि गे छोटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सज सुनछरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाए उनी कार्यालय ल खबर गिरिए
2: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: एकमात्र डीटीएच सेवा डिश होम।
1: डिश होम, खुशी को कनेक्शन।
2: नमस्ते डॉक्टर सर।
3: नमस्ते, बस्नुस् न, भन्नुस् त के हो?
2: हेर्नुहोस् न डॉक्टर साहब, मेरो बच्चा राति राम्रोसँग निदाउन पनि सक्दैन।

0: ढोक ढोक होइन ढोक्को हुँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड।
2: निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन